0: यहाँ की लड़की वाह बदन पे साड़ी वाह माथे पे बिंदिया वाह कानों में बाली वाह पैरों में पायल वाह होठों पे लाली वाह हाय भोली भाली वाह हाय शर्मीली वाह
1: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा
0: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट

सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे यहाँ की ईद बाबा यहाँ दिवाली बाबा यहाँ की होली बाबा दुल्हन की डोली बाबा चनिया चोली बाबा मीठी बोली बाबा
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: Raja Shivaji Baba, Akbar Basha Baba, Mahatma Gandhi Baba, Chacha Nehru Baba, Baba Ambedkar Baba, Mother Teresa Baba.
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: Taj Mahal Baba, Char Minar Baba. आम का अचार बाबा यहाँ का प्यार बाबा ऐश्वर्य राय बाबा सुष्मिता सेन बाबा ऑल इंडिया रेडियो बाबा डीडी मेट्रो बाबा दूरदर्शन बाबा यहाँ की आर्मी बाबा यहाँ की नेवी बाबा
1: So come on everybody in India come on now you know I'm telling you come on everybody in India come on welcome to India
0: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
2: सारे जहाँ से अच्छा
0: हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट
1: कम ऑन लेट मी हियर यू से कम ऑन एवरीबॉडी से इंडिया वी लव यू India for me and you India from the bottom to the top India India you cannot stop India let me see your smile India I love that style India is happening now India India we are so proud

आप भी अपना रेडियो बगल में रखो और सुनिएगा एवरी संडे आफ्टरनून योर फेवरेट प्रोग्राम भारत दर्शन रेडियो कम्स टू यू ऑन WRSU 88.7 FM न्यू ब्रंसविक न्यू जर्सी ऑन संडे फ्रॉम 3 टू 5 एंड ऑफ कोर्स यू कैन ट्यून इन ऑन ABC रेडियो ऑन ट्यूसडे फ्रॉम 12 टू 2 टू गिव यू संगीत के अनेक रंग. And I gave you a little bit of differences, like as Mukesh singing for Shammi Kapoor and Manna Day singing for Shammi Kapoor, and mostly, of course, Rafi Saab singing for Shammi Kapoor. But our loyal listener and friend Ashok Bhai reminded me that, yes, my favorite singer, Hemant Kumar, also sang for Mr. Shammi Kapoor, and Kalyanji Anandji provided the music for this very popular film. Hope you enjoy this as our last tribute song for Mr. Elvis Presley of India, Shammi Kapoor.